0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Punjabi.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1922. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Sharmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: बहुत लंबे समय तो औरतां दी सेहत नूं गंभीरता नाल नहीं लिया गया है। हुण बेहतर करन दा समा है, बेहतर सहायता, वधेरे स्पष्ट जानकारी अते वधेरे आसानी नाल उपलब्ध देखभाल। एंडोमेट्रियोसिस विच सहायता, आईयूडी लगवाउन समय मुफ्त दर्द राहत अते मेनोपॉज दौरान सहायता। असी बेहतर हो रहे हां तां जो तुसी भी बेहतर हो सको। womenshealth.vic.gov.au ते जाके होर जानो। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा जारी।
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
4: ਇਹ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚੀਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।